रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापह अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गा वह बंगली पुन्य असलेखी की पई बारी भैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावह बंगालम मध माधव गावह ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापै संग रागनी पंचों थापै गुण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनासरी ए पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरानंद गाय अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही ठेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पंचों आर जा सुरमानंद पास कर आई चंद्रबिंब मंगलन सुहाय सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी उन्हें आई दीपक की बारी

तल औरामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सामिल श्री राग वै गावै पांचो संग ब्रंगन लावै बैरारी करनाटी धरी गवरी गावै आसावरी ते पाछ सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सारग सागुरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वह गावै पांचो संग ब्रंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी उच्चै सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा धर गज धर केदारा जबली धर नट

पूजै हर हर देवा। हर हर जन कह मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कह ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवरण जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते हर को नाम, काम धेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लथा। नाम की महिमा संत हृद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम दिहाईऐ। नाम तुल कछे वरन होए, नानक गुरमुख ना पावै जन कोए। श्लोक बो शास्त्र बो सिमरती, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सकल त्याग बन वधे फिरिया। अनक प्रकार किए बो जतना, पुण दान हो मे बो रतना। शरीर कटाई हो मे का राती, वर्त नेम करै बो भाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माँ उदात पी सर थीवै। अगन माए होम तो पुराण, अनक असव है बर भूम दान। न्योली कर्म करै बो आसन, जैन मार्ग संजम रत साधन। नेमक नेमक शरीर कटावै, तो पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम सम सरकश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत कत पाहे। मन कामना तीर्थ दै छूटै, गर्भ गुमान ना मानते हुटै। सोच करै दिन सिर रात, मन की मैल न दंते जात। इस देही को बो साधना करै, मन दे कबू ना बिखिया टरै। जल तो वै बो दे अनीत, शुद्ध का होए गाची भीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पत बहुमूच। बहुत सियाणप जन का पाव व्यापै, अनक जतन कर तिशना धरापै। भेख अनेक अगन ही बूजै, कोट उपाव दर गै नहीं सीजै। छूटस नाही उप प्याल, मोहे व्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजम दिन नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साल जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संगे होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, सा जना की शरणी परै। जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा, नानक तां कै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा संग जा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सू गनिए सब ते ऊचा। जा का मन हो सगल किरीना, हर हा नाम दिन घट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिष्ट साजना। सुख दुख जन सम दिष्टेता, नानक पाप नहीं लेपा। निर तन को तन तेरो नाओ, निधावे को नाओ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो, आपे अपन संग आ प्रभ राते। तुम नी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुरमत मल हिरिया। सगल उद्यम है उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जासु रसन बखानी। सगल थान त्यो उत्तम थान, नानक जैकट वसै हर नाम श्लोक। निर्गुण यारे आने आ, सो प्रभ सदा समाल। जिन की आ तिस चीत रख, नानक निभी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कमल मूलते कवल दिष्टानी। जिंतु सास वार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारै, दूध भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरध प्याओ पर साख सैन, मुख प्यायो बैठ को दैन। एह निर्गुण गुण कुछ कछु न पूजै, बख्श लिहो तो नानक सीजै। जय प्रसाद तरु पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बंता संग हसै।
जय प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन भाव के मूला। जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साध वसा। दीने हस्त पाप का नित रसना तिसै त्याग वरसंग रचना। ऐसे दोख मूढ़ां दव्यापे नानक काढ़ लियो प्रभु व्यापे। आदि अंत जो राखण हार तिस्यो प्रीत न करै गवार। जां की सेवा नाम नित पावै तांस्यो मूढ़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। जां की टहल पावै दरगै मान तिसै विसारै मुक्त अजान। सदा सदा हि पूलन हार नानक राखण हार अपार। रतन त्या कोटी संग रचै साच चो छोड़ झूठ संग मचै। सो जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो हो सो दूर परानै। छोड़ जाय तिसका सम करै संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै तोय गर्तव प्रीत भस्म संग होए। अंधक उपमै पद बिकराल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंत मल माया शब शनाय कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापै लोभ समान। अंतर बाहर गंत स्वाहा गल पाथर कैसा तरह अथाहा। जां कै अंतर वसै पर व्याप नानक तेजन सह समात। सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर कह लिहो ओढ़ निभावै। कहाँ बुजारत पूजै डोरा निस्कहिए तो समझै भोरा। कहाँ बिजन पद गावै गुंग जतन करै तो पीसुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊआ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सुहाई सो आवै न चीत जो वै राई त्या सो प्रीत। बलुआ के करै भीतर वसै आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवै मूढ़ै चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह। याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुम सूत्र तारी तुम ते हुए सुआग्याकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हर प्रभ छोड़ कै लागै अण सुहाए। नानक कहू ना सी जई बिन ना वै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु लै पाछै पावै एक वस्त्र कारण विखोट गवावै। एक पीना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को कहाँ करे। जिस ठाकुर से नाहीं चारा तांगो की जय सत नमस्कारा। जा कै मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत शाह अपनी दे रास खात पीत बरतै अंध उलास। अपनी अमान कछ बारसा ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुत उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्त से आग्ञा राखै प्रभु की आग्ञा मानै माथै। उसते चौगण करै निहाल नानक साहेब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत सर पर होवत जानते अनेत। बिरकी साया स्यो रंग लावै ओ मिणसै ओ मन पछतावै। जो

ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सा जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का या नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार।

कई कोट की रत्न समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेन स्वर्ण थीवे कई कोट जकर किन्नर पचास कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच सब ते नीरै सब हूं ते दूर नानक आप तिरया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुख निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरहै कई कोट भोजो नहीं फिरै कई कोट बैठ दिखाए कई कोट घालै थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखै नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार भव लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगै सतसंग पा ब्रह्म तुन लागा रंग जिनको होए आपसो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुत की नो विस्तार कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एक अंकार

सोए। कई कोट पापम के दास तिन हो त्यात्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नृते, कई कोट नाम नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस उकसै समावै, कपने जन को सास सास समारै

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सात सात सिमरो गोबिंद माने अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो सात संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारु जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन मलिक लाल इह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाथ दवा जय सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरय तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबती उच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन

तुन बानियम सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सत्संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रपाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बस

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुझी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या

हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक कर है हर पूजा जी तब तापह जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता।

तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सुचियार मैडा साई, जो तो भावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहा, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए हे, सोई जन जानै, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सम होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या है जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले, मन एक न

बिंद मिलन किए तेरी बरिया, हवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत पद केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ।

चुन चुन सतर हमारी मारिया है, आथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हम हिराखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुस्त।

तुमरा लखा न जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारि सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवति उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तुटकाला। कृपा दृष्ट तन जा।

एक बार दिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो काहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा हा, खड़ग के तुम्हें

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सगल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अडिल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह है, सहस पणिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

गुरु प्यारियों, हुने जो आप शब्द सरवण करोगे वो भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया है। इस शब्द की रहाओ वाली तो जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली प्रभु मिलाप वाली अवस्था नाल उसकी जान पछाण हो जाती है। ये जग उसनों प्रभु की बनाई हुई एक बगीची जापती है।

संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दौरत दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनाहो मुफुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर राम दास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर राम दास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो।

संभवयो जगत गुर बचन तरायो अभिगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द बसायो गुर राम।

0: सतगुरु खे मां ताणिया जुग जुग जूत समाणे अनपो ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर रंग समाणे हर संग समाणे यो राज जो गुरु रामदास तुम हू रस जाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे यो राज जोग गुरु रामदास तुम हू रस जाने।
1: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत्संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक रा

0: कृष्ण
1: भगवती शांत वह प्रसाद के जाहर जहूर के हाजिर हजूर
2: हमेशा सलाम है समस्त
0: अटके पड़ो ना
2: प्रसाद करते कि आछिज देसे कि आ बिज पेसे
0: के आ कंज कर में के आ पांच पर में
1: के आदित सोके
2: के अब दूत बढ़ने की विभूत
1: के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा है
0: के अशोक बढ़ने के सर्वा परने
1: के चंद्र करती है के शतरंग क्षत्रिय
0: के ब्रह्म स्वरूप है के अनुप अनुप
1: के आद देव के आप पे
0: के चित्र बहिने के अधीन
1: रजा के रही में रहा
0: के पाप है के गर्भ गर्भ है
1: के
0: कारण तो निंदा है के रोजी दहिंदा है
1: के
0: सर्वं करी है के सर्वं दली है
1: के
0: सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौने
1: के
0: सर्वत्र राधे के सर्वत्र साधे के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के
0: सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: सर्वत्र मान्य सदैव प्रदान
0: के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है
1: सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र है
1: सर्वं कली में के परमं फै के
0: आकल लाल के साहिब कला में
1: सर्व जो है तमाम रज
0: हमें सदा में सदा सुख में दाम में
1: मक्ष कष्ट गरीब परस्त
0: बलिंदर मकाने जमीन जमाने
1: तमाम रज
0: स्वरूप है।

0: भगवती शांत प्रसाद की जाहर जहूर है के हाजर हजूर है,
1: हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है,
0: के साहेब दिमागे के हुस्नुल चराग
1: है, के कामल करीम है के राजक रहीम है,
0: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद
1: है, करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है,
0: गनीमुल के राज है गरीबुल निवास है,
1: हरिफुल शिकान है रे आचल फिकान है,
0: कलंकन परनास है समस्तुल निवास है,
1: अकंजुल करीम है रजाए करीम है,
0: समस्तुल जुबा है के साहेब के राज,
1: के नरकन परनास है बहतुल निवास है,
0: सरबुल गबन है हमेशुल रवान है, परम परम ईस है समस्तुल
1: अदीस है,
0: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है,
1: करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है,
0: के अचलन प्रकाश है के अमितो सुभाष है,
1: के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है,
0: के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है,
1: के अचलन अनंग है के अमितो पांग है,
0: मधुपात शांत प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदा,
1: हर भर गंज हर नर पर पंजो,
0: अनगन पर नाम मुन मन सलाम,
1: हर नर खंड भर नर मंड,
0: अनपव अनास मुन मन प्रकाश,
1: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम,
0: अंशिज अंग आसन अपांग,
1: उपमा अपार गच में उदार,
0: जल थल अमंड दिस्विस अपांड,
1: जल थल महंत दिस्विस बेअंत,
0: अनपव अनास ते तर तुरास,
1: आजान बाहु एक के सुदाहु,
0: ओंकार आद कथनी अनार,
1: खल खन के आल गुर भर अकाल,
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम,
1: अंशिज गाता जिज न बात,
0: अंजज गात अनरंज बार,
1: अटुट पनार्य अंडठ पार,
0: डीट तरम अत डीट कर,
1: अनबर्न अंत दाता महंत,
0: हर बोल मना चंत्र प्रसार, करनालय है और काल्य है,
1: खलखंडर है मैं मंडर है,
0: जगदेश्वर है परमेश्वर
1: है, कलकान है सर्वभार्ण है,
0: त्रित के तन है जग के कर्ण,
1: मनमान्या है जग जान्या है,
0: सर्पन पर है सर्पन कर,
1: सर्पाच्या है सर्वनाच्या है,
0: करुणा कर है विसंबर,
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस
1: है, पर्ते पर है करुणा कर है,
0: अजप्पा जप है थप्पा थप है,
1: अक्ता कीर्त है
0: अमृता अमृत है, करुणा कृत है,
1: अक्ता कीर्त है तरनीत है,
0: अमितेश्वर है परमेश्वर है,
1: अक्ता कीर्त है अमृता अमृत है,
0: अजबा कृत है अमृता अमृत है,
1: नरनायक है खलकायक है,
0: विसंबर है करुणालय है,
1: निपनायक है सर्पायक है,
0: पंजन है अर्गंजन है,
1: निपतापन है जब जापन है,
0: अकलन कृत है सर्पाकृत है,
1: कर्ता कर है हरता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म है,
1: आत्म वास है जस के जस है,
0: भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे, नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
1: नमो बिंद्र बिंद्रे, नमो बीज बीजे,
0: नमो राजस्तम संसात रूपे,
1: नमो परम तंतंग तंतंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो पोज पोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कल कर्ता, नमो शांत रूपे,
1: नमो इंद्र इंद्रे अनादन प्रभुते,
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके,
1: नमो आसे आसे, नमो बांक बंके,
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे,
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे,
0: एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय,
1: अबू अजू अनास अकाश,
0: अगंज अपंज अलख अपाख,
1: अकाल दयाल अलेख पेख,
0: अनाम अकाम अगा अडा,
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी,
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे,
1: अकर्म अपर्म अगंज
0: जंग पर्याद चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे,
1: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे,
0: कामन बेभूते समस्तुल स्वरूपे,
1: कुकर्म परनासी सुधर्म प्रभूते,
0: सदा सचदानंद सत्रन परनासी,
1: करीबल कुनिंदा समस्तुल निवासी,
0: अजाए बेभूते गजाए गनी,
1: हरियम करियम करीमुल रहीमे।

0: सूर सरादन सुध सुधारक संत समूह अनेक मति के।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के।
0: श्री भगवान की पाए के पाऊं ते एक रति बिन एक रति के।
1: माते बतंग जरे जर संग अनूप तंग सर्ग सवारे।
0: को तुरंग तुरंग से कुंदल पौन के गौन को जात निवारे।
1: भारी पुजान के पूप बलि वेदने आपत शीश न जात बचारे।
0: एते पहे तो कहा पे पूप अंत को ना गई पाए पदारे।
1: जीत फिरे सब देश दसान को बाज द टोल मरदंग नंगारे।
0: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे।
1: कोतप वेख पुआन के

0: मलंग
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
0: वीर अपार बड़े बरियार अवे बचार सार की तार बछैया
1: तोर देश मलंग मवासर माते गजान के।

0: चराचर भूत भविख पवन जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे।
0: प्रतापन बाट जेत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: सा समो पर सन फिरे जल सतर सवे अलोक चपेंगे।
0: मान में इंद्र गजिंदर रात जोन तर लोक को राज करेंगे।
1: कोष नान गजात दान अनेक स्वयं पर साज भरेंगे।
0: राम महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे।
1: जे नर श्री पद के प्रस पग ते नर फिर न दे तरेंगे।
0: कहां पे हो जो दो लोचन मोद के बैठ रहे हो भक्तान लगायो।
1: ना फिरियो ने सा समुद्रन लोग यो पर लोग गवायो।
0: वास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: सास को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
0: पाहुले पाहन पूर

0: फते पातशाही दशमी कपियो बाज बेती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: ताचा नन मन रे हमारा अपना जान करो प्रीत पारा
0: हमरे दुष्ट बात तुम काबो आप हाथ दे मोए बचावो
1: से मोरो परिवार सेवन सिख समय करता
0: मोर छानेज करते करिए सब बैरन को आज सगरिए तुम्हें छाड़ कोई अवर ना।

0: नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे,
0: सच्चा नाम मेरा आधार हो।
1: कर शाह सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।
2: सभागे गस सभागे सब दरवाजे गलत इसका तारी है।
0: पांच दूत दरवाजे की

0: माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय।
1: मनो क्यों विसारिय, गुणदाता जे अगर में आहार पचावे।
0: उसनु कहो पोहे न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए, गुरु सदा समानिय।
0: कहे नानक ए वरदाता, सो क्यों मनो विसारिय।
1: जैसी अगर उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब इको जे ही करता खेल, करते खेल रचाया।
1: परवार भला पाया।
0: लिव छुड़की लगी तिसना, माया अमर वरताया।
1: माया जिधर विसरे मोग जे पादू जलाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: हराप मोल कै मोल न पाया जाए।
0: मोल न पाया जाए, किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसे मन आए।

मात पिता हम बारिक कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो तुमरी गत मेत तुम ही जानी बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौने दया वै ताई सब ठाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई होए सहाय दसवां

कर्म नाम वर्णत सुमत सो कहो तल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खुसमदी नूर अरसों कुसों चटिए तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए

नचा सबको, नाच नाच हंसा चलने से रोए, उड़ न जाए सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ।

अपराधी शरण चरण तुम समर्था कारण करन ढाकन ढाक गोविंद गुर मेरे मोहे अपराधी शरण चरण रहाओ।